0: Hello and welcome. My name is Reeve Kaur Sahani. You're watching NETV. Well, we've got an action-packed show this morning, but let's first take you through the headlines of the hour. In an exclusive interview with NDTV, Bill Gates has sounded a warning over the rapid transformation AI could bring. A report from the Gates Foundation has raised concerns about safety, control, and the possibility of AI moving faster than humans can adapt. After remaining on the run for over 50 hours, Kalyan Besla has been arrested and brought to Gurugram. Police tracked him using CCTV footage and informed multiple teams, while biker Siya Chauhan claims he intentionally hit her vehicle and fled from the scene. The era of 100% free UPI is soon going to be over. From October 15th, UPI merchant payments above 2,000 will attract 0.4% merchant discount rate. This fee has been capped at Rs 300 per transaction. However, all person-to-person UPI payments still remain free. Meanwhile, in Punjab, the Punjab Congress has stepped up its attack on the Aam Aadmi Party government over the death of Gulzar Singh, who allegedly died by suicide after he was allegedly humiliated for confronting the minister Harpal Cheema. Congress seeks resignation of the Punjab minister. 52-year-old dies after speeding car hits motorcycle in Faridabad. The SUV driver allegedly fled after the crash, while police seized the vehicle and identified the suspect. All right, let's take you this morning through the top stories of the hour. After an over 50-hour-long manhunt, Gurugram police have arrested the prime accused, Kalyan Besla from Dausa in Rajasthan, following a viral road rage incident involving a woman biker. However, yet again, the accused made an attempt to escape, this time from police custody. Police say the accused attempted to flee from police custody on the pretext of going to urinate. During the escape attempt, he fell and sustained minor injuries. He was then taken to the hospital and provided first aid. Last evening, he was brought to the Gurugram police station. Not just that, the police have even further added an attempt to murder charge against him after studying the CCTV and the dashcam footage. Meanwhile, the victim biker CR reacted to these developments and demanded strict action against all of the accused in this particular case.
1: देखिए जो भी इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ संडे मॉर्निंग जो मेरी वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था और जो भी चीजें मैंने पर्सनली फेस करी और मेरे साथ करी गई वो मैंने उनको अपना सारा बयान दिया है कैसे मुझे बीच में हरास करा गया था चेस करा गया और इंटेंशनली मुझे मारा गया जिससे मेरी मौत भी हो सकती थी और सारे मैंने स्टेटमेंट वहां पे दे दिए और उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी करी है कि इस केस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए एंड अरेस्ट करना भी कोई एक सेटिस्फेक्शन नहीं होती है जब तक उनपे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता अगर आज वो उन्होंने अरेस्ट करा है अगर किसी ने 3 दिन बाद उनकी बेल करवा दी तो वो एक एक्शन नहीं होगा उसके अगेंस्ट अगर 2 लोगों को कराए 2 और लोग थे गाड़ी में उनको भी अरेस्ट किया जाए और उनको सजा मिलनी चाहिए इस चीज की अगर आज उनको सजा नहीं मिलेगी तो ऐसे और आगे सेम केसेस होते रहेंगे
2: कल्याण ने अपने एक इंटरव्यू गिरफ्तार करा है तो बहुत अच्छी बात है अभी मेरी नॉलेज में नहीं है मीडिया के थ्रू मेरे को जानकारी आई है कि उसको राजस्थान से पकड़ा है तो पुलिस अच्छा काम कर रही है शेड कर रही है और हम चाहते हैं कि किसी भी महिला के साथ ऐसा कोई एक्सीडेंट ना हो पूरे देश के अंदर लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए जिस प्रकार का ये क्राइम था ये ना एक्सीडेंट क्राइम नहीं है ये अटेम्प्ट टू मर्डर वाला क्राइम करके वो गए हैं ऐसे लोग हार्श गाड़ी नहीं चलाते मतलब हिट कर रहे हैं
3: हमारे साथ सिया के जो वकील हैं वो मौजूद हैं आप जो है कोर्ट के अंदर मौजूद थे क्या कुछ जो है वो बयान दर्ज किया गया
4: सर मैंने बता दिया जी 164 की स्टेटमेंट होती है वो उसमें सब बता दिया गया है और जो वीडियो में दिख रहा है जिस तरीके से मारा है वो अटेम्प्ट टू मर्डर के पूरे चार्जेस हैं और चार्जेस लगा दिए गए हैं 307 IPC लगाए गए और 354 509 और 34 और हिट एंड रन का जो बता रहे हैं वो भी उसके रैश एंड नेग्लिजेंस के चार्जेस हैं
3: और इसमें सिया की तरफ से जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया उसमें सिया ने क्या कुछ कहा कोर्ट के सामने
4: सिया ने यही बताया कि जैसे जिस तरीके से मुझे मारा हिट किया गया है वो कोई एक एक्सीडेंट कहीं से नहीं लग रहा जैसे कि सब लोग पूरे हिंदुस्तान वीडियो में देख रहे हैं कोई ऐसा हिट एंड रन वाला नहीं है वो इंटेंशनली मारा गया और उसमें उसको कुछ भी हो सकता था, तो शुक्र है भगवान का कि वो बच गई, बट कुछ भी हो सकता था।
0: All right, we have some breaking news coming in this morning. Let's take you through it. The Meta India MD and the head have been summoned yet again. The child rights panel has summoned Meta bosses, and the summon has occurred over the CSAM allegations. That's right, Meta to report child abuse cases. The National Commission for Protection of Child Rights has issued a notice to Meta Platforms on the 3rd of July 2026, taking suo motu cognizance of a BBC iMedia report alleging advertisements related to child sexual exploitative and abuse material, also remember known as CSAM. The NCPCR has sought an explanation from Meta in the matter, and Meta submitted its response a week later. The NCPCR has since decided to constitute a formal inquiry to determine the facts of the case. In continuation to, in fact, this inquiry, once again, it has now summoned the managing director and head of Meta India with a hearing scheduled for today, the 16th of September. Now, NCPCR's persistent follow-up on the CSAM matter has prompted Meta to revise its policy on reporting child sexual abuse cases. Meta, remember, has been reporting such cases to the Indian Cybercrime Coordination Centre. So, an important update that we're getting yet again. This is, remember, with regard to CSAM allegations. In that context, we're understanding that Meta top bosses have now been summoned. Now, an important update that we're tracking on this case, as we're learning, as the National Commission for Protection of Child Rights has issued yet another notice, especially

0: Hello and welcome. My name is Reeve Kaur Sahani. You're watching NDTV. Well, we've got an action-packed show this morning, but let's first take you through the headlines of the hour. In an exclusive interview with NDTV, Bill Gates has sounded a warning over the rapid transformation AI could bring. A report from the Gates Foundation has raised concerns about safety, control, and the possibility of AI moving faster than humans can adapt. After remaining on the run for over 50 hours, Kalyan Besla has been arrested and brought to Gurugram. Police tracked him using CCTV footage and informed multiple teams, while biker Siya Chauhan claims he intentionally hit her vehicle and fled from the scene. The era of 100% free UPI is soon going to be over. From October 15th, UPI merchant payments above 2,000 will attract 0.4% merchant discount rate. This fee has been capped at Rs 300 per transaction. However, all person-to-person UPI payments still remain free. Meanwhile, in Punjab, the Punjab Congress has stepped up its attack on the Aam Aadmi Party government over the death of Gulzar Singh, who allegedly died by suicide after he was allegedly humiliated for confronting the minister Harpal Cheema. Congress seeks resignation of the Punjab minister. 52-year-old dies after speeding car hits motorcycle in Faridabad. The SUV driver allegedly fled after the crash, while police seized the vehicle and identified the suspect. All right, let's take you this morning through the top stories of the hour. After an over 50-hour-long manhunt, Gurugram police have arrested the prime accused, Kalyan Besla from Dausa in Rajasthan, following a viral road rage incident involving a woman biker. However, yet again, the accused made an attempt to escape, this time from police custody. Police say the accused attempted to flee from police custody on the pretext of going to urinate. During the escape attempt, he fell and sustained minor injuries. He was then taken to the hospital and provided first aid. Last evening, he was brought to the Gurugram police station. Not just that, the police have even further added an attempt to murder charge against him after studying the CCTV and the dashcam footage. Meanwhile, the victim biker CR reacted to these developments and demanded strict action against all of the accused in this particular case.
1: देखिए जो भी इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ संडे मॉर्निंग जो मेरी वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था और जो भी चीजें मैंने पर्सनली फेस करी और मेरे साथ करी गई वो मैंने उनको अपना सारा बयान दिया है कैसे मुझे बीच में हरास करा गया था चेस करा गया और इंटेंशनली मुझे मारा गया जिससे मेरी मौत भी हो सकती थी और सारे मैंने स्टेटमेंट वहां पे दे दिए और उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी करी है कि इस केस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए एंड अरेस्ट करना भी कोई एक सैटिस्फैक्शन नहीं होती है जब तक उनपे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता अगर आज वो उन्होंने अरेस्ट करा है अगर किसी ने 3 दिन बाद उनकी बेल करवा दी तो वो एक एक्शन नहीं होगा उसके अगेंस्ट अगर 2 लोगों को कराए 2 और लोग थे गाड़ी में उनको भी अरेस्ट किया जाए और उनको सजा मिलनी चाहिए इस चीज की अगर आज उनको सजा नहीं मिलेगी तो ऐसे और आगे सेम केसेस होते रहेंगे
2: कल्याण ने अपने एक इंटरव्यू गिरफ्तार करा है तो बहुत अच्छी बात है अभी मेरी नॉलेज में नहीं है मीडिया के थ्रू मेरे को जानकारी आई है कि उसको राजस्थान से पकड़ा है तो पुलिस अच्छा काम कर रही है शेड कर रही है और हम चाहते हैं कि किसी भी महिला के साथ ऐसा कोई एक्सीडेंट ना हो पूरे देश के अंदर लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए जिस प्रकार का ये क्राइम था ये ना एक्सीडेंट क्राइम नहीं है ये अटेम्प्ट टू मर्डर वाला क्राइम करके वो गए हैं ऐसे लोग हार्श गाड़ी नहीं चलाते मतलब हिट कर रहे हैं
3: हमारे साथ सिया के जो वकील हैं वो मौजूद हैं आप जो है कोर्ट के अंदर मौजूद थे क्या कुछ जो है वो बयान दर्ज किया गया
4: सर मैंने बता दिया जी 164 की स्टेटमेंट होती है वो उसमें सब बता दिया गया है और जो वीडियो में दिख रहा है जिस तरीके से मारा है वो अटेम्प्ट टू मर्डर के पूरे चार्जेस हैं और चार्जेस लगा दिए गए हैं 307 IPC लगाए गए और 354 509 और 34 और हिट एंड रन का जो बता रहे हैं वो भी उसके रैश एंड नेग्लिजेंस के चार्जेस हैं
3: और इसमें सिया की तरफ से जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया उसमें सिया ने क्या कुछ कहा कोर्ट के सामने
4: सिया ने यही बताया कि जैसे जिस तरीके से मुझे मारा हिट किया गया है वो कोई एक एक्सीडेंट कहीं से नहीं लग रहा जैसे कि सब लोग पूरे हिंदुस्तान वीडियो में देख रहे हैं कोई ऐसा हिट एंड रन वाला नहीं है वो इंटेंशनली मारा गया और उसमें उसको कुछ भी हो सकता था, तो शुक्र है भगवान का कि वो बच गई, बट कुछ भी हो सकता था।
0: All right, we have some breaking news coming in this morning. Let's take you through it. The Meta India MD and the head have been summoned yet again. The Child Rights Panel has summoned Meta bosses, and the summon has occurred over the CSAM allegations. That's right, Meta to report.

0: फेस करी और मेरे साथ करी गई वो मैंने उनको अपना सारा बयान दिया है, कैसे मुझे बीच में हरास करा गया था, चेस करा गया और इंटेंशनली मुझे मारा गया जिससे मेरी मौत भी हो सकती थी, और सारे मैंने स्टेटमेंट वहां पे दे दिए और उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी करी है कि इस केस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। एंड अरेस्ट करना भी कोई एक सेटिस्फैक्शन नहीं होती है जब तक उनपे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता। अगर आज वो उन्होंने अरेस्ट करा है, अगर किसी ने 3 दिन बाद उनकी बेल करवा दी तो वो एक एक्शन नहीं होगा उसके अगेंस्ट। अगर 2 लोगों को कराए, 2 और लोग थे गाड़ी में, उनको भी अरेस्ट किया जाए और उनको सजा मिलनी चाहिए इस चीज की। अगर आज उनको सजा नहीं मिलेगी तो ऐसे और आगे सेम केसेस होते रहेंगे।
1: कल्याण ने अपने एक इंटरव्यू
2: अगर गिरफ्तार कराया है तो बहुत अच्छी बात है। अभी मेरी नॉलेज में नहीं है, मीडिया के थ्रू मेरे को जानकारी आई है कि उसको राजस्थान से पकड़ा है, तो पुलिस अच्छा काम कर रही है, सेड कर रही है और हम चाहते हैं कि किसी भी महिला के साथ ऐसा कोई एक्सीडेंट ना हो पूरे देश के अंदर। लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। जिस प्रकार का ये क्राइम था, ये ना एक्सीडेंट क्राइम नहीं है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर वाला क्राइम करके वो गए हैं। ऐसे लोग हार्श गाड़ी नहीं चलाते, मतलब हीट कर रहे हैं।
3: हमारे साथ सिया के जो वकील हैं वो मौजूद हैं। आप जो है कोर्ट के अंदर मौजूद थे, क्या कुछ जो है वो बयान दर्ज किया गया?
4: सर मैंने बता दिया जी, 164 की स्टेटमेंट होती है, उसमें सब बता दिया गया है। और जो वीडियो में दिख रहा है जिस तरीके से मारा है, वो अटेम्प्ट टू मर्डर के पूरे चार्जेस हैं और चार्जेस लगा दिए गए हैं। 307 IPC लगाए गए और 354, 509 और 34 और हिट एंड रन का जो बता रहे हैं वो भी उसके रैश एंड नेग्लिजेंस के चार्जेस हैं।
3: और इसमें सिया की तरफ से जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, उसमें सिया ने क्या कुछ कहा कोर्ट के सामने?
4: सिया ने यही बताया कि जैसे जिस तरीके से मुझे मारा हिट किया गया है वो कोई एक एक्सीडेंट कहीं से नहीं लग रहा, जैसे कि सब लोग पूरे हिंदुस्तान वीडियो में देख रहे हैं, कोई ऐसा हिट एंड रन वाला नहीं है, वो इंटेंशनली मारा गया और उसमें उसको कुछ भी हो सकता था, तो शुक्र है भगवान का कि वो बच गई, बट कुछ भी हो सकता था।
5: Well, on that note, let's turn our attention now to Tamil Nadu. We have breaking news updates coming in. Former school education minister Anbil Mahesh Poyamuri's residence that's been raided by the Central Crime Branch in connection with allegations of bribery involving private schools. Now, the Crime Branch is conducting searches at multiple locations linked to the former minister, including his residence in Tiruchirappalli. And the investigation relates to allegations that money was collected in the name of securing or renewing recognition and other statutory approvals for private educational institutions. Now, this investigation is already broader than a single complaint because the CCB told the Madras High Court last week that it had received 177 complaints alleging money was collected from private schools on the promise of obtaining permanent recognition and other approvals. At the center of the underlying case is DMK functionary and Tamil Nadu Private Schools Association office bearer BT Arasa Kumar, we're told, who was arrested in June in connection with allegations that more than 100 crore rupees was collected from school managements. My colleague Vijay is tracking all the finer details. He joins us for the clarity we need at the moment. Vijay, how many locations are being searched? What exactly is the CCB looking for at the moment? Take us through all the details.
6: Parmeshwar, that's right. So far, what we know is CCB writes 6 locations linked to DMK former minister Anbil Mahesh, including his residence in Trichy. And in Chennai city also, searches are being conducted by CCB. And also on the other hand, remember on the June, DMK functionary PT Arasa Kumar was arrested by CCB in alleged bribery cases. The complaint was Arasa Kumar collected around 100 crore bribes from private school management in the name of giving license or renewal of license to private educational institution. He was arrested, and now related to this, after the inquiry, now the CCB have started their searches across the premises, 6 premises linked to former school education minister Anbil Mahesh. An association released a video saying that Anbil Mahesh collected bribes for giving license, and then Anbil Mahesh sent a defamation notice to the private association also. Now, related to this only, the CCB is conducting searches, but on various occasions, Anbil Mahesh has denied those corruption allegation, bribery allegation against him. He said he will face anything legally. And on the other hand, remember in Legislative Assembly, during Legislative Assembly session, Finance Minister

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
2: देश का टायर जेके टायर।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा आरती और मसाला।
6: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
7: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, everyday.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा और मसाला।
7: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
8: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: get you the latest. This is after over 50 hours of that long manhunt. The Gurugram police finally managed to arrest the prime accused, Kalyan Besla, not from Haryana, but from Rajasthan in Dausa, following a viral road rage incident involving a woman biker, Sia. Now, questions are being raised as far as the change of hairstyle of Besla during custody. Visuals showing him in a shorter hairdo during custody and then while he was being arrested. As per sources, Gurugram police cut Besla's hair. In Gurugram, the police cut the hair of major criminals or those involved in heinous crimes after arresting them. Meanwhile, questions are being raised on the disappearance of bandages that were on his hand when he was arrested. In fact, there were no bandages on his hands in the evening. In custody, those bandages had also disappeared.
1: देखिए जो भी बयान उनकी तरफ से आए हैं उनके लॉयर और जो भी मैं कल से ट्विटर इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ उनके सपोर्टर्स के बयान तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ज़रूरत है अपनी जस्टिफिकेशन देने की जो चीज़ें मेरे कैमरा में रिकॉर्ड हुई है इनफैक्ट एक कैमरा में नहीं है वो मल्टीपल कैमरास में रिकॉर्ड हुई है जो मेरे फेलो राइडर पीछे चल रहे थे जब वो रेड लाइट पे रुके कैसे वो भागे और मुझे नहीं समझ आता वो कैसे ये बयान दे सकते हैं कि गलती से टक्कर हो गई मुझे तो पता नहीं था लड़की है तो ये सारे बयान उनके झूठे बयान हैं और मुझे नहीं पता कि उनकी क्या मेंटालिटी है क्या उनकी मंशा थी किस थॉट से वो मेरे को चेस कर रहे थे एंड इंटेंशनली मार के गए वो तो पूरे देश ने देखा है उस वीडियो में कि कैसे वो इंटेंशनली मार के वहां से भागे हैं
2: ये कल्याण बैसला का बयान है क्या
3: जी
2: कि मेरे को वॉशरूम मारा था इसलिए मैंने गाड़ी तेज भगाई वॉशरूम आ रहा था तो गाड़ी रोक भी सकते थे स्लो भी कर सकते थे और वॉशरूम कर सकते थे क्या रात भर वॉशरूम नहीं करा ये कौन सा नॉनसेंस बयान है कि वॉशरूम के कारण गाड़ी भगा रहा था
4: हमारे साथ सिया के जो वकील हैं वो मौजूद हैं आप जो है कोर्ट के

0: was arrested, there were bandages on his hands, but in custody they don't seem to be there anymore.
1: देखिए जो भी बयान उनकी तरफ से आए हैं उनके लॉयर और जो भी मैं कल से ट्विटर इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ उनके सपोर्टर्स के बयान, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई ज़रूरत है अपनी जस्टिफिकेशन देने की. जो चीज़ें मेरे कैमरा में रिकॉर्ड हुई है, इनफैक्ट एक कैमरा में नहीं है, वो मल्टीपल कैमरास में रिकॉर्ड हुई है. जो मेरे फेलो राइडर पीछे चल रहे थे जब वो रेड लाइट पे रुके, कैसे वो भागे, और मुझे नहीं समझ आता वो कैसे ये बयान दे सकते हैं कि गलती से टक्कर हो गई, मुझे तो पता नहीं था लड़की है. तो ये सारे बयान उनके झूठे बयान हैं, और मुझे नहीं पता कि उनकी क्या मेंटालिटी है, क्या उनकी मंशा थी, किस थॉट से वो मेरे को चेस कर रहे थे एंड इंटेंशनली मार के गए. वो तो पूरे देश ने देखा है उस वीडियो में कि कैसे वो इंटेंशनली मार के वहां से भागे हैं.
2: ये कल्याण बैसला का बयान है क्या
3: जी?
2: कि मेरे को वाशरूम मारा था इसलिए मैंने गाड़ी तेज भगाई. वाशरूम मारा था तो गाड़ी रोक भी सकते थे, स्लो भी कर सकते थे और वाशरूम कर सकते थे. क्या रात भर वाशरूम नहीं करा? ये कौन सा नॉनसेंस बयान है कि वाशरूम के कारण गाड़ी भगा रहा था?
4: हमारे साथ सिया के जो वकील हैं वो मौजूद हैं. आप जो है कोर्ट के अंदर मौजूद थे, क्या कुछ जो है वो बयान दर्ज किया गया?
5: सर मैंने बता दिया जी, 164 की स्टेटमेंट होती है वो, उसमें सब बता दिया गया है. और जो वीडियो में दिख रहा है जिस तरीके से मारा है वो अटेम्प्ट टू मर्डर के पूरे चार्जेस हैं, और चार्जेस लगा दिए हैं. 307 IPC लगाए गए, और 354, 509 और 34 और हिट एंड रन का जो बता रहे हैं वो भी उसके रैश एंड नेग्लिजेंस के चार्जेस हैं.
4: और इसमें सिया की तरफ से जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया उसमें सिया ने क्या कुछ कहा कोर्ट के सामने?
5: सिया ने यही बताया कि जैसे जिस तरीके से मुझे मारा हिट किया गया है वो कोई एक एक्सीडेंट कहीं से नहीं लग रहा, जैसे कि सब लोग पूरे हिंदुस्तान वीडियो में देख रहे हैं. कोई ऐसा हिट एंड रन वाला नहीं है, वो इंटेंशनली मारा गया और उसमें उसको कुछ भी हो सकता था. तो शुक्र है भगवान का कि वो बच गई, बट कुछ भी हो सकता था.
0: A shocking hit-and-run case also is being reported from Faridabad that has left a 50-year-old man dead. Shravan was returning to Palwal when a speeding Thar allegedly mowed him down before the driver abandoned the SUV and fled. Police seized the vehicle and launched a manhunt, with the victim's family alleging the driver was intoxicated. The driver was later arrested, but the family alleges police took 3 days to act and that the accused got bail within 2 hours. The victim's daughters, who say their father was the sole breadwinner, are now demanding proper action and justice.
6: जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे पापा अपना ड्यूटी ऑफ करके घर को आ रहे थे, तो उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है. तो कार वाहन को उस टाइम पे व्हीकल को पकड़ लिया था, थार गाड़ी से उनकी टक्कर हुई थी, बट पुलिस प्रशासन ने 3 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई हमारी मदद नहीं करी है. सोमवार को उसको पकड़ा गया है मुजरिम को, और 2 घंटे में उसको बेल दे दी गई है. ये कोई सही इंसाफ नहीं था हमारे लिए. हम दोनों बहनें हैं, हमारे घर में कमाने वाले सिर्फ हमारे पिताजी थे, पापा थे, सिर्फ हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मेरी मम्मी है और हम दोनों बहनें ही हैं. तो पुलिस को भी ऐसी सोचनी चाहिए कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है. तो हमारी प्रशासन से मांग है तो कृपया करके इस केस के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए. अगर हमारा प्रशासन ऐसे ही चलेगा तो ऐसे क्रिमिनल्स की भी और हिम्मत बढ़ेगी कि क्राइम करो और 2 घंटे में बाहर आ जाओ. प्लीज़ हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट है सीएम से, पीएम मोदी से, कि इस केस की तरफ और हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि एक हमारे पापा ही थे जो हमें सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली भी हर तरीके से. तो प्लीज़ हमारी आपसे विनती है, प्लीज़ हमारी हेल्प करें और हमारे तरफ भी थोड़ा ध्यान दें. मुजरिम को सख्त से सख्त सजा मिले, कुछ तो करो प्लीज़, कोई एक्शन तो उठाओ. इतनी ईजिली 2 घंटे में छोड़ना नहीं सही है. प्लीज़ हमारी कोई हेल्प करो. थैंक यू.
0: Disturbing incident in Nagpur. A woman driving at a high speed injured 7 people, including 3 young children, with a car. Several victims sustained serious injuries. According to reports, the woman was driving so fast that she completely lost control of the vehicle. Her out of control car first rammed into an SUV belonging to a man. Then the accident occurred just as the man was stepping out of his vehicle with his young daughter. After hitting the SUV, the car spun completely out of control and struck 3 innocent children who were on the road. The incident did not stop there. The car went on to forcefully hit 2 other men present at the scene, identified as Harish Rivadkar and Ashish Nakate. A total of 7 people were injured in the accident. Chaos and screams erupted at the scene immediately following the crash. Eyewitnesses and locals present at the spot claim that the woman was under the influence of alcohol at the time of the accident. The police administration swung into action upon receiving news of the incident. Confirming the details, the police stated that the woman has been taken into custody and is undergoing intensive questioning. The police are also thoroughly investigating who else was in the car with the woman at the time of this accident. To ascertain the entire incident and the sequence of events, the police are meticulously examining CCTV footage from the accident and the surrounding areas. Here's what the police has to say.
3: हमें करीबन एक घंटे पहले माहिती मिली सभी वरिष्ठों को कि एक 32 वर्ष की महिला है जो अपनी किया गाड़ी से चार लोगों को हिट कर रही है, जख्मी कर चुकी है। वो चार लोग इंजर्ड हैं, वो भी हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी उनकी कंडीशन स्टेबल है। फर्दर फिरियाद और FIR रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस चालू है, पुलिस अपना काम कर रही है। महिला को हम लोगों ने अभी कस्टडी में रखा है, लेटर ऑन उनका मेडिकल सैंपल लिया जाएगा, ब्लड सैंपल लिया जाएगा उनको कस्टडी में लेकर, उस पर उससे निष्पन्न होगा कि वो इंटॉक्सिकेटेड थी।
0: My colleague Prajakta now joins me live on the broadcast. Prajakta, 7 people impacted by that high-speed car. What do we know about the woman driving this car?
7: Definitely, that woman driving a car at high speed that allegedly lost her control of the vehicle and ended up hitting 7 people, including 3 children. That accident happened when the man was getting out of SUV along with his young daughter. And the women car, the first hits SUV, and after that, the car went completely out of control and hit 3 children who were on the road. And the serious injury happened, and the people that local were angry on this accident. There was a lot of chaos at the spot, and after the accident, local and eyewitness alleged that the women was under the influence of alcohol. And police are now investigating the allegations. They have taken her sample if she had taken any alcohol or anything else. How she lost the control now. Police are trying to find out who else was inside in the car. And at the time of incident, that CCTV footage from the spot are nearly by areas being checked. And to understand exactly what happened during that accident. But meanwhile, the angry locals gather outside the police station and demanded strict action against the women.
0: All right, thanks for joining me live there. We started this bulletin by bringing you the latest on the hit and run that took place in Gurugram on Sunday. We then brought you details of the Faridabad hit and run, the Nagpur hit and run, and now we're going to get you another shocking hit and run incident that we're reporting on from Greater Noida. A speeding car hit a pedestrian, leaving the victim with multiple injuries and fractures. The impact was so severe, with the victim suffering fractures in both legs, his arms, knees and spine. Following a complaint, the police have registered a case in connection with the incident. The accused has also been arrested by the police.
8: Himanshu ka birthday tha 5th September pe. To Himanshu car se utar ke gaye cake lene ke liye. Main car mein hi baithi hui thi. Aur wo jab wapas aa raha tha to baki sari cars, agar aapke paas wo video aap dekhoge to baki sari cars bahut slow motion mein thi aur wahi car aayi speed mein. और एट द एंड जब हिमांशु पास आया तो उसने कार और ज्यादा स्पीड में कर दी. ऐसा लगा कि वो ड्रंक था, उसकी कार पूरी लहरा रही थी. वो बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए. एक तो वो कैब ड्राइवर, जो भी ड्राइवर था, वो रुका नहीं. पंच, टाटा पंच का जो वो ओनर है, और वो रुका नहीं. और विद इन वन वीक उसने अपनी सारी चीजें ठीक करवा ली कार की, शीशा, बम्पर. अगर वो कल्प्रिट नहीं था तो वो उसको हाइड नहीं करना चाहता.
0: Soumya Jaiswal now joining me live on the broadcast. Soumya, we have Jyoti Mandal, the wife of the injured victim, claiming that there's been a cover-up as well by the man who was behind the wheels. Just give us more details on her claim.
9: Well, Vedika, yes, it's correct. The incident took place earlier this month on 5th September, and it is in the early hours of 5th of September. The incident took place at around 4:35 a.m. in the morning. And the victim in this case was there at Ek Murti Chowk in Greater Noida as he was crossing.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: All the best. Course, please. तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले इनोवेटर से. प्लीज वेलकम नोएडा उत्तर प्रदेश से वी जीनोमिक्स इंडिया के इनोवेटर्स डॉक्टर रहीदा सरदार और मिस्टर समीर मलिक. हाय वंदे भारत, में आपका स्वागत है.
1: थैंक यू.
0: मेरा बस एक ही क्वेश्चन रहता है कि ये इस इनोवेशन पे कितने सालों से काम कर रहे हैं.
1: चार साल से.
0: चार साल से. सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या थी? ओके, लेट्स पुट दिस.
1: हाँ, सो स्ट्रगल ये थी कि मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो मेरा बच्चा 4 महीने का था. कोविड के टाइम पे मेरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी. डॉक्टर ने बोला जेनेटिक टेस्ट करना है. आई वॉज इन उत्तराखंड तो मुझे दिल्ली आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे तो जेनेटिक टेस्ट नहीं होता. मैं PhD भी कर रही थी. अनफॉर्चुनेटली मैं PhD ही जीनोमिक्स और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में कर रही थी. ठीक है, तो जब मैं आई फिर मैंने डिसाइड किया. जब मेरा टेस्ट हुआ तो 30-40 दिन वो रिपोर्ट्स नहीं आ रही थी. एक तो कोविड था, सेकंड वेव थी, डेथ्स हो रही थी बहुत ज़्यादा. तो मुझे डर लग रहा था कि अगर मेरी रिपोर्ट्स अगर पॉजिटिव आ गई तो क्या होगा. तो उस टाइम PhD का काम तो हो ही गया था क्योंकि मैंने 3.5 साल में अपना PhD का काम कंप्लीट कर लिया था. उसके बाद उस 40 दिन के अंदर मैंने इतना जेनेटिक्स रेयर डिजीजेस के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि अब मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है. लेकिन उस जब होता है ना कि आप जब बताओ फैमिली को, उनको होता है कि इतना छोटा बच्चा है, 4 महीने का है, ब्रेस्ट फीड पे है, तुम क्या राहिला, यू आर ओवर एम्बिशियस. सो ये सारी चीज़ें रही. बट मेरे हस्बैंड सपोर्टिंग थे. उन्होंने कहा देखो आप एक बच्चे के लिए सोल्यूशन नहीं बना रहे हो, करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है. आई विल सपोर्ट यू. जबकि PhD के बाद मुझे पोस्ट डॉक स्टैनफोर्ड से आया, एक जॉब भी दी काफ़ी अच्छी US में. बट आई डिसाइडेड आई विल बी देयर. मेरा मानना ये, देखिए ऐसी चीज़ बनाई है कि स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड वाले आपको खुद बनाए ना कि मुझे जाना पड़े. सो मेरा मिशन है कि मैं इसको सॉल्व करूँ.
0: इतना कुछ सहन किया आपने उसके लिए आप इस मंच पर खड़ी हैं. ओके, सो फील कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट एंड विद अ स्माइल. आपकी पिच रेडी है?
1: या बिफोर शी स्टार्ट्स कैन आई गिव हर अ हग? या

0: am so inspired by your passion.
1: Thank you. Yeah.
0: Good luck.
1: Be well.
2: आपके चमकने का समय शुरू होता है अब।
3: नमस्ते, क्या आप ये बच्ची देख रहे हैं? ये बचपन से स्माइल नहीं करती थी, चलते चलते गिर जाती थी, पैरों में दर्द की कंप्लेन करती थी। आज 4 से 5 साल बाद मल्टीपल मिसडायग्नोसिस होने के बाद इसके पेरेंट्स को पता लगता है कि इसको एक डेडली जेनेटिक डिजीज है। बात यहाँ नहीं रुकती, डॉक्टर से आंसर मिलता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है और इसकी लाइफ सिर्फ 3 से 4 साल और बची है। वर्ल्ड में ऐसे 35 करोड़ लोग हैं जो ऐसी बीमारियों के साथ अफेक्टेड है और इंडिया में आप गेस करिए कितना है? 10 करोड़ लोग हैं जो कि अफेक्टेड है और ज्यादा दुख की बात तो यह है कि 7 करोड़ सिर्फ बच्चे हैं। मेरी पीएचडी खत्म होने के बाद स्टैनफोर्ड में ना जाके मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे इन पेशेंट्स और फैमिलीज को आंसर्स प्रोवाइड करना है थ्रू अ सॉल्यूशन दैट कैन एक्सेलरेट द डायग्नोसिस एंड ड्रग डिस्कवरी एज वेल। ऐसे स्टार्ट हुई वी जीनोमिक्स की। अप्रैल 2022 में मैंने वी जीनोमिक्स स्टार्ट किया। इसमें मेरे साथ पार्टनर किया डॉक्टर प्रीति गुप्ता लाल जो कि यूएस से हैं एंड शी वर्क्ड इन फार्मा इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 35 इयर्स एंड को ओन 150 यूएस पेटेंट। सो वी बोथ जॉइन टुगेदर एंड स्टार्टेड दिस कंपनी वी जीनोमिक्स। हमारा मिशन है इस बच्चों और फैमिलीज को आंसर्स प्रोवाइड करना ताकि इनको फास्टर डायग्नोसिस और इवेंचुअली फास्टर ड्रग्स डेवलप हो सके।
4: मेरा नाम है समीर, कोफाउंडर ऑफ वी जीनोमिक्स। मैं आता हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कॉमर्स बैकग्राउंड। तो जब मैं डॉक्टर राहिला और डॉक्टर प्रीति से मिला तब आई रियलाइज दैट दिस इज द टीम वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट एंड वी कैन मेक इट अ ग्लोबल स्टेज कंपनी। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जेनेटिक टेस्टिंग बढ़ रही है, राइट? हम उसको कैंसर में देखते हैं, रेयर जेनेटिक डिजीजेज में देखते हैं, IVF में देखते हैं। आज लैब्स और हॉस्पिटल बहुत सारी करोड़ों स्पेंड करके मशीन्स खरीद रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक जेनेटिक टेस्ट में 8 से 80 GB डेटा जनरेट होता है और उससे अगर आपको एक रिपोर्ट बनानी है उसका मतलब है कि जैसे ये यहाँ भूसा रखा है उससे आपको ये निडल ढूंढ के निकालनी, राइट? इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ये सारा प्रोसेस स्लो है, मैनुअल है और फॉरेन सॉफ्टवेयर्स पर डिपेंडेंट है। और इसी के सॉल्यूशन के लिए हमने बनाया देश का अपना विजन 23। विजन 23 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी मशीन से DNA डेटा एक्सेप्ट करता है, उसको कोरिलेट करता है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बिल्ड करके ये सारा काम केवल आधे घंटे में कर देता है। हमने 3 साल पहले 3.15 करोड़ रेस किए, 13 लोगों की टीम बिल्ड की और पूरी R&D करके ये सॉल्यूशन इसी साल लॉन्च किया। केवल 4 महीनों में आज हमारे पास 80 से ज़्यादा B2B यूजर्स उसको यूज़ कर रहे हैं। लगभग 1 करोड़ के POs क्लोज कर दिए और 2.5 करोड़ के POs पाइपलाइन में हैं।
3: हमारी आज के 5 करोड़ रुपए आपसे और आपके 1-1 घंटे की मेंटरशिप ताकि हम इस प्लेटफॉर्म को एक देश का ऐसा स्केलेबल प्लेटफॉर्म बनाए जिससे ना कि सिर्फ डायग्नोसिस बट ड्रग डिस्कवरी फास्ट हो और पेशेंट्स और फैमिलीज को आंसर्स प्रोवाइड कर सके। थैंक यू।
0: फर्स्टली 2 स्ट्रॉन्ग फीमेल फाउंडर्स आई लव, यू नो, टू हियर योर स्टोरी अबाउट हैविंग टू मैनेज बोथ मदरहुड एंड रनिंग दिस बिजनेस इज वेरी इंस्पायरिंग एंड ट्रूली हार्ट वार्मिंग, सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। How do you price it?
4: We built a pure SaaS model. Now, all of us are tech entrepreneurs. We understand SaaS model. But in genomics, there was no SaaS model. If you go to any platform, you will not be able to figure out the pricing. So what we did is we put a pricing. Right now, the pricing is live on our website. So any small or medium lab that runs as a pure software play, they come in. That becomes our top funnel. When they come in, that is priced at around 2,000 to 2,500 rupees. And when they come in, when they start running the test, that's when we do the commercial contract with them.
5: What I can see here, you've tested on or you've trained it on around 1,500 samples. Is that correct?
3: Right. We have processed till now 1,500 samples.
5: Oh, you have processed.
3: Yeah,
5: but
3: through this.
5: What is your benchmark?
3: We are already from day one. We are working with the big hospital like AIIMS Delhi, PGI. We scrape all the big database from NIH. वहाँ से हमने काफी सारे डेटाबेसेस लिए डिफरेंट डिजीज, तो ऐसे हमने 100 सैंपल गैदर किए और उसमें हमने वैलिडेशन एस्टैब्लिश किया, सो वी हैव रिसीव्ड अ 99.1% एक्यूरेसी इन दैट।
6: फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टेकन अ वेरी वेरी एप्ट प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। आई हैव कपल ऑफ पीपल इन माय क्लोज सर्कल हु गॉट डिटेक्टेड विद कैंसर वेरी वेरी लेट। आई मीन इट्स टू हार्ड। आई थिंक द प्लेस दैट यू हैव चोजन इज ग्रेट एंड द काइंड ऑफ टीम दैट यू हैव पुट अप, आई थिंक all boxes are ticking for me. I think happy to mentor and see if we can if I can also

0: आप जानते हैं कि अगर आप टॉप 5 विनर्स में आए तो हम आपसे फिनाले एपिसोड में वापस मिलेंगे. विश यू ऑल द बेस्ट, कीप शाइनिंग एंड यू कैन गो एंड सेलिब्रेट.
1: थैंक यू. थैंक यू.
0: स्कोर्स प्लीज. तो हमारे जो अगले इनोवेटर आ रहे हैं ना, उनका जो इनोवेशन है वो काफी भारी भरकम है. तो प्लीज वेलकम केरला से ऑटोजेन बॉट के इनोवेटर विपिन केवी.

0: Cosby.
1: आज वंदे भारतम के मंच पर आए कुछ यंग माइंड्स और बोल्ड आइडियाज जो रखते हैं भारत के फ्यूचर को बदलने का जज्बा। जयपुर से मैफकिन रोबोटिक्स,
2: आज भी इंडिया में शिप इंस्पेक्शन और क्लीनिंग का काम डाइवर असिस्टेड टूल्स द्वारा किया जाता है। हम इस पूरे प्रोसेस को चेंज करना है। हम बना रहे हैं नोहा और अंगद, हमारी ऑटोनोमस रोबोटिक फ्लीट।
1: संभाजी नगर से माई पेरो,
3: आपके सबसे प्यारा दोस्त, आपका वफादार डॉग अगर बीमार हो तो चुपचाप कोने में बैठ जाता है। माई पेरो एक स्मार्ट कॉलर जो टेम्परेचर, हार्ट रेट कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है और सिम्टम्स अपीयर होने से पहले ही ओनर को अलर्ट करता है।
1: जयपुर से रीग्रिप इंडिया,
4: टायर एक कचरा नहीं है, इट्स अ वैल्यूएबल रिसोर्स। कलेक्शन से लेके एक टायर का रिसाइक्लिंग तक पूरी जर्नी हमने एक 360 डिग्री प्लेटफॉर्म के अंदर इंटीग्रेट करी है।
1: इरोड से हैथोर रॉकेट्स,
5: टुडे कंपनी स्पेंड मोर देन 7 प्लस इयर्स बर्निंग हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स टू अटेम्प्ट देयर फर्स्ट ऑर्बिटल लॉन्च अटेम्प्ट। वी आर सॉल्विंग दिस एट हैथोर रॉकेट्स। We are building high-performance liquid rocket engines for launch vehicles, in-space mobility applications, and strategic defense applications.
1: जिनके high-performance liquid rocket engine ने किया Mentos को impress और उन्हें मिले Srishti Adani से Vande Wings.
6: अब आप हमारे innovators के full pitches हमारे unplugged episodes में देख सकते हैं.
7: आज ये सिर्फ startup innovator हैं, लेकिन कल इनमें से कुछ business tycoons होंगे, कुछ industry leaders और कुछ ऐसे change makers जो लाखों जिंदगियों की दिशा बदल देंगे। आज वंदे भारतम के इस कारवां से आप भी जुड़ गए हैं। अगर किसी इनोवेटर के आइडिया ने आपको इम्प्रेस किया है तो आप उनके लिए वोट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट @vandebharatam.org और बाय स्कैनिंग द QR कोड ऑन योर स्क्रीन। देखिए वंदे भारतम के सारे एपिसोड्स ऑन NDTV इंडिया, NDTV 24/7, NDTV प्रॉफिट और NDTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे भारत के नए कल में।
8: And we bring in our product that's called Baidu. Everybody taught me that you are okay to fall. It's not disability that should put you out. It is the ability and the confidence inside you should bring you out.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: With SBI Celebrations Unlimited, make this Ganeshotsav extra special with festive offers on car loan, gold loan, personal loan and loan against mutual funds.
2: Hindustan mile, Hindustan se.
3: Desh ka tire, JK tire.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: Hello and welcome to Apple Park. I am so thrilled to be here today. Every day, people around the world rely on our products.
1: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
2: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world's biggest tech moment. NDTV app is the most trusted. NDTV, when it really matters.
3: A generation with questions.
4: The starry and the whole glamorous side of it.
5: As I said, like, I can't empathize with it.
3: Unconventional.
6: I feel blessed. As long as the work is going on, I'm happy.
3: Unapologetic. Unafraid of change. Ready to challenge.
7: Aspirational.
3: The ideas. The issues.
8: You really are.
3: The young view.
9: Public perception.
3: NDTV Yuva. 28 September 2026. Only on the NDTV network.
10: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
11: Dr. Roma, manual winding. Char logon ke paas hai.
12: Kuch isse bhi anokha.
11: Kamla pasand, sirf ek anokha swad. Kamla pasand paan masala.
13: Gold rush on the field.
14: India's champions are ready.
13: The battles and the breakthroughs from the arena to the podium.
14: Asian Games 2026.
13: Go for glory only on NDTV.
15: 5 hours to go for all of DKS's dreams to come true. I'm going to try and get more into the crowds. Here are the pictures, Siddaramaiah.
16: NDTV stands completely engaged with Karnataka.
17: Higher end, check the audio.
15: Let's do it. Let's start.
18: Breaking story, we're jumping straight into it.
15: We've got a picture of the letter. What is in your letter? You can never predict what's going to happen in Tamil Nadu politics.
19: 21 days in Kashmir. Unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
15: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
20: For a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
19: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
15: The line of control, Shiv Arur, NDTV.
21: We are crossing a heavy ridge line now. We are going to be descending into the valley where the damage has taken place. So this is the Bhotekoshi River now. It used to be Trishuli downstream. It's now the Bhotekoshi. This is the first look that we saw.
22: If a boy from Ahmedabad could build what stands here today, then there must be 1,000 more Gautam Adanis simply waiting for someone to notice them.
23: इसी सोच के साथ संघर्ष की खदानों में छिपे देश के हीरों को तराशने के लिए श्री गौतम अदानी ने शुरू किया देश का सबसे बड़ा ग्रास रूट्स इनोवेशन मूवमेंट वंदे भारतम। एक ही महीने से कम समय में देश भर से जुड़े लाखों लोग, हजारों सपने, टॉप मेंटर्स, कई शीर्ष नेतृत्व, बदलने देश के स्टार्टअप का सीन, करने करोड़ों का निवेश, आइडियाज को साल भर वेलकम करने के लक्ष्य के साथ। तो मंच है शानदार, करोड़ों की प्राइज मनी का हो रहा है ऐलान, स्पेशल कैटेगरी पर भी है खास ध्यान। और बात सिर्फ पुरस्कारों तक सीमित नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेंटर्स को किसी इनोवेशन या बिजनेस आइडिया में पोटेंशियल नजर आता है तो वे शुभारंभ के लिफाफे के साथ कर सकते हैं उसमें इन्वेस्ट। या ये भी हो सकता है कि किसी इनोवेटर की कहानी और उनका स्ट्रगल किसी मेंटर को इंस्पायर कर दे तो वे उन्हें दे सकते हैं वंदे विंग्स, जिसमें उन्हें मिलेगी अदानी ग्रुप के साथ 10 दिनों की मेंटरशिप। और अगर आपका आइडिया नहीं बन सका हमारा भागीदार तो निराश न होना, बस रजिस्ट्रेशन करो, पाओ निवेश में मदद, मेंटरशिप या अदानी ग्रुप का सहकार। और हाँ, ऑडियंस भी हमारे पोर्टल पर जाकर इनोवेटर्स को वोट कर सकती है, और यदि आपका टॉप 5 का सिलेक्शन मेंटर्स के सिलेक्शन से मैच होता है तो 3 लकी विनर्स को मिलेगा स्पेशल प्राइज। तो अब क्यूरियोसिटी कम करते हैं और इनोवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं।

0: I think you've got support from almost everyone. Thank you so much for coming here. All the best.
1: Thank you.
2: Thank you.
1: Thank you.
0: Of course, please. Let's get our next innovator on the stage. Please welcome Sambalpur, Odisha se Space Fields Private Limited ke innovator Apurva.
3: Namaskar, sir.
0: Hi, Apurva. Kaise hain aap?
3: All well, sir.
0: Welcome to Vande Bharat.
3: Thank you so much.
0: Ready with the pitch?
3: Sure.
0: Mentors are right there. And your time to shine starts now.
3: Okay. Namaskar, mentors. मेरा नाम है अपूर्वा मासुक. आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्पेस फील्ड्स. मेंटर्स, आपके फोन्स में जब बैटरी जल्दी ड्रेन होने लगती है या स्क्रीन पे स्क्रैचेस हो जाते हैं तो हम ब्रांड न्यू स्मार्टफोन नहीं खरीदते. हम उसकी बैटरी को रिप्लेस करके या नया डिस्प्ले लगा के वो नई जैसी हो जाती. कुछ ऐसा ही करती हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस उनके रॉकेट्स और मिसाइल्स के साथ. कोई भी रॉकेट या मिसाइल कितना दूर जाएगा यानी कि रेंज, कितना तेज़ी से जाएगा यानी कि स्पीड, कितना वेट कैरी कर पाएगा यानी कि पेलोड, ये सब कुछ डिपेंड करता है उनकी उसकी फ्यूल पे. ये फ्यूल को हम प्रोपेलेंट या प्रोपल्शन कहते हैं. ये प्रोपेलेंट सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे कि दिवाली के आतिशबाजियों में यूज़ होने वाला बारूद. दिवाली के पटाखे जब आप एक दो साल यूज़ ना करो तो वो ख़राब हो जाती हैं. कुछ उसी तरह ये रॉकेट्स और मिसाइल्स अगर 10-15 साल तक यूज़ ना हो तो उसकी प्रोपेलेंट एक्सपायर हो जाती है. नतीजा, पूरी मिसाइल बेकार. भारत में आज कई लाखों करोड़ों रुपये

0: के ऐसे रॉकेट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स एंड आर्मामेंट हैं जो ये सॉलिड प्रोपेलेंट्स पे निर्भर हैं. एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न दैट इंडिया इज अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स इन दिस फील्ड. बट ये सब स्टॉक में रखना भी बहुत ज़रूरी है फॉर नेशनल सिक्योरिटी रीजंस. पर जब सालों पुरानी खरीदी हुई डिफेंस स्टॉकपाइल की प्रोपेलेंट्स एक्सपायर कर जाए तो टैक्स पेयर्स के अरबों रुपए दांव पर लग जाते हैं. टैक्स पेयर्स के इन्हीं पैसों को बचाने के लिए और भारत की टेक्नोलॉजिकल सॉवरेंटी को बूस्ट करने के लिए हमने शुरुआत की स्पेस फील्ड्स. स्पेस फील्ड्स में हम कई ऐसे नए सॉलिड प्रोपेलेंट्स पे R&D करते हैं जो एग्जिस्टिंग रॉकेट या मिसाइल की एक्सपायर्ड प्रोपेलेंट को रिप्लेस करके देश की डिफेंस इन्वेंट्री में नई जान डाल देती है. हमारे प्रोपेलेंट से मिसाइल्स की रेंज और स्पीड बरकरार रहती है, इनफैक्ट अपग्रेड भी होती है. पुराना स्टॉक दोबारा यूजेबल होता है और देश और देशवासियों के अरबों रुपए की बचत भी होती है. एज अ यंग कंपनी, वी आर 4 years old, हमने काफ़ी प्रोग्रेस इस डायरेक्शन में किया है एंड आर्म फोर्सेज का भरोसा भी हासिल किया है. आज स्पेस फील्ड्स के पास 50+ मेंबर्ड R&D टीम, 30+ पेटेंट्स, 15+ डिफेंस एंड एरोस्पेस कस्टमर्स एंड 45,000 स्क्वायर फीट R&D फैसिलिटी भी है. हमारा विजन है कि हम अपने इनोवेशन से भारत के डिफेंस एसेट्स को ट्रूली इंडिजिनस, सॉवरेन एंड सस्टेनेबल बनाए. ओडिशा के छोटे से शहर से शुरू हुआ ये सफर आज देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत और आत्मनिर्भर करने का संकल्प बन चुका है. एज वी प्रोग्रेस ऑन दिस चैलेंजिंग एट क्रूशियल मिशन, वी आस्क फॉर योर सपोर्ट एंड पार्टनरशिप एंड अ फंडिंग ऑफ 8 crores. थैंक यू सो मच.
1: तो अपूर्वा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेट्स ऑन योर जर्नी. एंड In fact, we see a lot of different startups in space defense, and you have chosen a very unique, very focused, unique problem statement, which is very, as we all know, like it's very need of the hour for the whether it's the forces or like all the customers you serve. So I'll ask a technical question and explain your technology. Matlab, what is different from a regular, solid propellants or regular rockets, and also on a global scale, how do they compare?
0: जैसे fuel में आसान भाषा में बोले mileage. तो कितना देती है गाड़ी, तो कुछ उसका कंपेरेबल पैरामीटर प्रोपेलेंट में स्पेसिफिक इम्पल्स विच इज़ ISP. तो कोई भी रॉकेट का डिज़ाइन अराउंड ISP होता है. तो हमारे प्रोपेलेंट से 20-30% इंक्रीज इन बैलिस्टिक परफॉर्मेंस या ISP मिलती है. यूजुअली हम कस्टमर बैकवर्ड्स हैं, तो जैसे कस्टमर्स को रिक्वायर्ड होती है हम उस तरह से प्रोपेलेंट केमिस्ट्री खुद की डिज़ाइन करते हैं. कई बार जैसे डिफेंस में रिक्वायर्ड होती है स्मोकलेस प्रोपेलेंट, कि कोई ट्रेल ना हो प्रोपेलेंट पे, सो दैट IR ट्रैकिंग एटसेट्रा कैनॉट बी डन. तो दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट वी हैव डेवलप्ड. तो करेंटली हमारा मेन कोर कॉम्पिटेंसी है कि हम एनर्जेटिक्स में या प्रोपेलेंट केमिस्ट्री में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं एंड काफ़ी R&D करते हैं, एंड देर इज़ नो कंपेरेबल एस्टैब्लिशमेंट इन द कंट्री दैट डज इट.
1: अमेजिंग. What kind of mentorship or what kind of support you think like I can provide for space fields?
0: 2020, when I was graduating, ISRO signed an MOU with our institute to fund the project with 50 lakhs in grants. That time Dr. K. Sivan, he was the chairman. And the same month, 2-3 things happened. May 2020, I remember you raised a massive Series A, $11 million, and space privatization followed quickly. So I think those 2-3 things, it was like a convergence. And when I was graduating, I was I have to do this. So that has been my journey. So definitely you are someone who has been there, done that in this field. Now we are going in our early growth phase, and India mein jaise kehte hain ki risk capital especially for growth stages is very, very difficult to mobilize. So I would really like your support in that.
1: Absolutely. Like I always say, like, raising capital in our sector is like rocket science. And then, happy to help out. And also, like, you talked about policy, regulation challenges, anything you think, which you want to take it to the center level, to resolve it, let me know. Definitely happy to, work with you on unblocking those bottlenecks and, see how we can work together on that.
0: Thank you so much, sir. Very generous of you.
2: I think I really like the focus that you have on silver bullet. Hey, I want this. I want to save the cost for defense, and finding one that niche will actually help you scale faster, in my opinion.
0: So this is a field where there is no other startup competitor. So it's a field that is largely occupied by legacy incumbents, and we are the only startup in this field. Very recently, we have secured 121 acres in Andhra Pradesh in Anantapur. where we plan to set up our own propellant manufacturing plant and scale up the production capacity to meet the armed forces requirements.
3: But great work, and I would like to give you the one thing.
4: Fabulous.

0: प्लीज।
1: और आज वंदे भारतम के मंच पर आए कुछ ऐसे इनोवेटर्स जो टेक्नोलॉजी के जरिए भारत का फ्यूचर लिखना चाहते हैं। गुरुग्राम से ड्रोनवर्स, जो इंडिजीनियस ड्रोन और काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी से भारत की सुरक्षा को मजबूत बना रहा है। इंदौर से इलेक्ट्रिका एनर्जी, जो एआई के जरिए बैटरीज को स्मार्टर और सेफर बना रहा है। ग्रेटर नोएडा से वोल्टवर्क्स, जो इंडिजीनियस ईवी टेक्नोलॉजी के साथ भारत के इलेक्ट्रिक फ्यूचर को पावर दे रहा है। मोरबी गुजरात से रन मुक्ति ग्रिड टेक्नोलॉजीज, जो भारत के पावर ग्रिड्स को सिक्योर बना रहा है। और नोएडा से इनक्रेडिबल डिवाइसेस, जो इनोवेटिव मेडटेक के जरिए हेल्थ केयर को और अफोर्डेबल बना रहा है।
0: अब आप हमारे इनोवेटर्स के फुल पिचेस हमारे अनप्लग्ड एपिसोड्स में देख सकते हैं।
2: हमारे इनोवेटर्स ने दिखा दिया कि इनोवेशंस के लिए हमेशा हाईटेक फॉरेन लैब की जरूरत नहीं होती। कभी कभी असली सॉल्यूशंस तो हमारे देश की मिट्टी और ग्रास रूट की तकलीफों से भी मिल जाते हैं। हमारे मेंटोर्स के सारे स्कोर्स अब हमारे वंदे भारतम वॉल्ट में जा चुके हैं। इस वॉल्ट में सिर्फ स्कोर्स और नंबर्स नहीं है दोस्तों, इसमें है भारत के कोने कोने से आए सबसे बेहतरीन इनोवेटर्स की उम्मीद और सपने। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने सारे इनोवेटर्स में से किसे मिलेगा कैश प्राइज और खुद गौतम अदानी जी से मिलने का मौका, जल्दी पता चल जाएगा। आज वंदे भारतम के इस कारवां से आप भी जुड़ गए हैं। अगर किसी इनोवेटर के आइडिया ने आपको इम्प्रेस किया है तो आप उनके लिए वोट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट @vandebharatam.org और बाय स्कैनिंग द QR कोड ऑन योर स्क्रीन। देखिए वंदे भारतम के सारे एपिसोड्स ऑन NDTV इंडिया, NDTV 24/7, NDTV प्रॉफिट और NDTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं भारत के नए कल में।

0: सर बहुत से लोग पूछना चाहेंगे कि आप शॉपिंग करते हैं?
1: मैं ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ। होता क्या है कि मैं वहाँ शॉप में जाता हूँ तो काफी लोग मेरे को पकड़ते हैं, इससे मैं ऑनलाइन ही
0: ऑलराइट, बारी आ गई है फर्स्ट पोजीशन की। सो विनर ऑफ वंदे भारतम, उनका नाम है

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,